0: हरे एक पुरख एक नगरी आवै सब एक नगर निहारे हर प्रभ कर व्या सब ठाई सब चीरी जगत समारे आप दयाल दया दान देवै जो पात्र तीरे कारे
1: फिर हुक्म न कर।

जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आदि अंत एकै अवतारा सोई गुरु समझो हमारा।

जिसनो कृपा करे सो त्यावै नित हर जप जप जप हर सुख पावै गुर प्रसादी हर रस आवै जप हर हर पार लंघाई जीउ रहाउ निरभउ निरंकार सतनाम जग मै श्रेष्ठ उत्तम काम

0: कृत
1: कहां बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी
0: पीड़े ज्यो कहानी
1: वर्ण सकु महिमा जो तुहारी
0: देखे सुने
1: हम न सकत कर सिफत तुम्हारी
0: जम जम
1: लिहो तुम कथा सुधारी
0: हम
1: न सकत कर सिफत तुम्हारी
0: जिन
1: आप लिहो तुम कथा सुधारी। वाहिगुरु साहिब जी पौड़ी हौ सदके तिना गुरसिखा सतगुरु नूं मिल आप गवाया हौ सदके तिना गुरसिखा कारण उदासी अंदर माया हौ सदके तिना गुरसिखा गुरमत गुरचरणी चित लाया हौ सदके तिना गुरसिखा गुरसिख दे गुरसिख

0: मेरे जन्मां दे पाप सारे धो गए,
1: तेरे दातियां दे दार जद हो गए, मेरे जन्मां दे पाप सारे धो गए।
0: ओए कागजे ते मांग दिल साफ है जी, उत्ते

पंचभूत ताज तंगन दादा जिनको कर ले हो गोपाल कृपा निधान दीन दयाला सदाचारी पूर्ण परमेश्वर नील खादे ना हो भी भंगन मन दान अरब धरी हर आग्या

hecho ahora. Tienes que poner con el diario. Ay, que me he levantado, cara. Que tenía tan. A pesar de que se ve lo que hay, a कीमत कागज कही ना जाई कोरन में जाई और बाद अंत पर जाई आती है देखी केरे को वर्तन तारी मुरली मनोहर हरंगा मोहन मारे हो रही मरा रही मेरे दीजिए हर जीव आजर जंगा रही जग जीवन अपने जुड़ा हुआ प्रवासी है संगा तरह तरह नरसिंह नारायण

जात पाहारा तीर्ज सुनियारो एरण मतभेद हथियार पाओ खलागन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित ठार।

मूर्त अनेक दर्शन की रूप अनेक खेल खेला खेल खेलने अंत को फिर एक देव भेव न जानही। जे वेद और कते रूप रंग न जात पात सो जान नहीं कह जे बहुत आत्मात न जात जाकर जन मरण विहीन चक्र बकर फिरै चत्र चक मान ही पुर तीन लोक चौदह के विखै जग जाप पई जय जाप। आद देव अनाद मूर्त थाप्यो सबै जे थाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख पावर सर्व स्वरच्यो सुयम पवगण भंजन हार। कालहीन कला संजोत काल पुरखा देश धर्म धाम सो परम रहत भूत अलख अभे संग राग नरंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्तदायक काम महाप्रूप अमीक अन उस्तत। एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार सर्वगंता सर्वांता सर्व ते अनपेक सर्वशास्त्र न जानही। जे रूप रंग वर एक परम वेद पुराण जा कह नेत भक्त नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवही। बहुचित मद पार संत प्रसाद गुण गुण उदार महिमा पारा सुनया पंग उपमानं

कालानकाल अनुभूत अंग आप आय भंगत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपह काम मत दुत प्रचंड मित गा ते अखंड वालिस्या कर्म आदृश्या धर्म सर्वा प्रणाढ़ अंडन बाढ़ चाचरी शांत वै प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदार अपार हरियं करियं नरे नामे अकामे भुजंग प्रयात छंद चत्रो चक्र करता चत्रो चक्र हरता चत्रो चक्र दानी चत्रो चक्र जानी चत्रो चक्र वर्ती चत्रो चक्र परती चत्रो चक्र पाले चत्रो चक्र काले चत्रो चक्र पासे चत्रो चक्र वासे चत्रो चक्र मानिए चत्रो चक्र दानिए चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पित्र न कर्म न काय जन्म न जाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र पृथ्वी से आदि से अदृश्य अकृश्य भगवती शांत है प्रसाद कहते क्या श्री दिश क्या भिज पिसे क्या गंज कर्म है क्या पंच भरम है क्या दित आज लोक है क्या दित सुख है क्या अवधूत भरने के विभूत करने के राजन प्रभा है धर्म पूजा है क्या सुख भरने के सर्वा भरने की जागत कृति है के शत्रंग क्षत्रिय के ब्रह्म स्वरूप के अनुपाहन उपय के आदा देव है के आप अपेव है के चित्रम महीने के अधीन है के रोजी रजा के रही मेरे हक के पाक भी ऐब है के गैबल गैब है के गफुल गुनाह है के साह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहन है के राज करहीम है के कर्म करीम है के सर्वंगली है के सर्वंगली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है हे सर्वत्र राज एक सर्वत्र साजय एक सर्वत्र दीन एक सर्वत्र लीन एक सर्वत्र जा हो के सर्वत्र पाव हो के सर्वत्र देश एक सर्वत्र पेश एक सर्वत्र काल एक सर्वत्र पाल एक सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज एक सर्वत्र राज एक सर्वत्र सुख एक सर्वत्र भूख एक सर्वत्र त्राण एक सर्वत्र प्राण एक सर्वत्र देश एक सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मानिए सदैव प्रधानी है कि सर्वत्र जापिए कि सर्वत्र थापिए कै सर्वत्र पहन के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंकली में के परम भीमे के आकल अलामे के साहिब कलामे के हुसन उल वजू है तमाम लो रुजू है हमेश्वर सलाम है सली खत्म दाम में गनी मुल शिकस्त है गरीब उल परस्त है बिलंद उल मकान ने जमीन उल जमान ने तमीज उल तमाम में रजू उल निदान ने हरीफ उल अजी मेरे जायक यकीन है अनेक कुल तरंग है अपेद है अपंग है अजीज उल निवास है गनी मुल खराज है निरोगत स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुजोगत सुधा है सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्त पराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है उंगाद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनाम त्रिपंगी त्रिकाम त्रिबरकन त्रिबाधे गंजे अगाध सुपंग सर्वभाग सुपंग सर्वभागे सुसर्वानुराग त्रिभुक्त स्वरूप है अछिज है अछूत है कि नरकम प्रणास है पृथ्वी प्रवास है निरोक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरोगत सदा है विभुगत प्रभा है अनोगत स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद

सर्वं हन्ता सर्वं गन्ता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्म सर्वं कर्म सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल शन्त्वै प्रसाद। नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनाम्ये त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रै न पुत्रै न सत्रै न मित्रै न तातै न मातै न जातै न पातै नरसाकं श्रीकै अमितो अमीके सदैवं प्रमाह अजय है अजाओ है। भगवती छंद त्वै प्रसाद के जा हरजूर है कि हाजर हजूर है हमें सलो सलाम है समस्त कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसनल चिराग है कि कामल करीम है कि राज करीम है कि रोजी देहांद है कि राज करहिंद है करीमुल कमाल है कि हुसनल जमाल है गरीमुल खराज है गरीबुल नवाज है हरी फुल शिकन है हेरा सुलफिकन है कलंकम प्रणास है समस्त निवास है अगंजुल गनी में रजाय क्रीम है समस्त जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकम प्रणास है बहिस्त निवास है कि सर्वुल गवन है हमें सुलर वन है तमाम लुतमीज है समस्त अजीन है परम परमीश है समस्त अधीश है अधे सुल अलेख है हमें सुल अपेख है जमीन उल जमा है अमी कुल मा है करीम उल कमाल है कि जुरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि अमित तो सुभाष है कि आजब स्वरूप है कि अमित तो विभूत है कि अमित तो प्रसा है कि आत्म प्रवाह है कि अचलंग अनंग है कि अमित तो अपंग है मध पार शांत वै प्रसाद। मन मन प्रणाम गुण गण मुदाम हर वर गंज हर नर पर पंज अन गण प्रणाम मन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अन छिज अंग आसने अपंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमन दस विस अपन जल थल महान दस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित तर तुरास आजान बाहुई के सदा ओंकार आद कथनीय नाद खल खंड ख्याल गुर बरे अकाल कर कर प्रणाम चित चरणा मन छिज गात अजना बात अन झंझ गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार अडीठ धर मत ठीठ कर्म अण ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना शंत वै प्रसाद। करुणालय है अर्कालय है खलखंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कलकारण है सर्व उबारण है त्रत के तरण है जाके करण है मनमानिय है

अमृत है, धरणी धृत है, अमतेश्वर है, ब्रह्मेश्वर है, अकृता अकृत है, अमृता अमृत है, अजवाकृत है, अमृता अमृत है, नरनायक है, खलकायक है, विश्वंतर है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्पायक है, पंजन है, अर्गंजन है, रेप तापन है, नप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्मवस है, जस के जस है, पुजंग प्रयात शांत

परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जोग जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलय कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादम विभूते कलंकर रूपे अलंकर अलंके नमो आश्वासे नमो बांक बांके अपंगी स्वरूपे अनंगी नाम मित्र भंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अच्छरी शांत

त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बरे यार बिचार है सार की तार पशहिया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़ी गड़ान के तोड़न हार सुबात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सब

देव फनिंदन ने साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे।

ब्रह्म महेश्वर विष्णु सच्ची पत अंत फसे जम फास परेंगे। जे नर श्री पत के प्रश है पग ते नर फेर न दे तरेंगे।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कभी उबाच बेनती चौपाई हमरी क्रोहा दैर अच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो पारा हमरे दुष्ट सब है तुम कावह आप हाथ दै मोह बचाव सुखी बसे मोरो परिवारा सेवक सिख सब है करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिए सब बैरन कहो आज संघरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा

नमस्कार तुसही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सिवकन को सबगुन सुख दियो सत्रन को पलमो बत कियो काट काट के अंतर की जान भले बुरे की पीर पिशान चीटी ते कुंचरे सथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला।

आप अपनी बुद्ध है जेती बरन भिन भिन तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा के बिद सजा प्रथम संसारा एकाय रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कही भूपायण डंजेर जसे तजकीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आजुगा स्वरूप स्वयंपव।

कृपा दृष्ट, कृपा दृष्ट तन जाहिने हरे हो ताके ताप तन कमहि हरे हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाश्व सके न कोई।

जीव निर्मल बारू निर्मल बारू तन निर्मल नियम निर्मल सतगुरु ते करणी कमाणी कूड़ की सोए पौचे नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिनी खटिया

कल कोहोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हो मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार जह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु,

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक ले ते आए। फिर अंगत गुरते अमरदास रामदासें होए सहाए। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय कर नौनद आवै ताए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय दसां पातशाह दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाह। पंजा प्यारियां चौह सब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां तेरा नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई देग वाही देख के अंडट कीता तिना प्यारिया सचियारां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलो जी। जिन्ना सिंगां सिंगनियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपड़े लहाइयां चरखियां दे चढ़े आरे नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा ले कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान तरके बोलो जी। पंजां तख्तां अते सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहेब तहाँ तहाँ रचा रहे देख देख फतेह बिरध की बैज पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल वाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग टल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पाता राखा वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारा गुरधाम जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है उन्हां दे खुले दर्शनदार दी सेवा संभाल दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे माण नितानियां दे ताण नेओटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु आप ते हजूर संपूर्ण आसा की वारद के कीर्तन छे पौड़ियां नंद साहिब दे पाठ किए गए हैं। पाठ करदियां कीर्तन करदियां अनेकां गलतियां हो गई होणगियां अनजाण बच्चे समझ के माफ़ करना अगे तो शुद्ध स्पष्ट अते मन लगा के पाठ करन दे मत बुद्धि बख्शनी वाहिगुरु जी। हुक्मनामा बख्श के निहाल करना जी। वाहिगुरु जी आप जी दे हजूर कड़ा प्रसादी देग हाजर है जी। दर प्रवान करनी भोग लगा के संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शनी वाहिगुरु जी। काम क्रोध लोभ मोह हंकार झूठ निंदा ईरख आदि तो बचा के रखना वाहिगुरु जी। अखर वादा घाटा पोलचक माफ़ करने सरबते कार्ज रास करने सही प्यारे मेल जना मिलया तेरा नाम चित आवै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबता भला।

जाए। जोत लिख्या लेख सोई सब कमाए, सब कछ दिसदै बच दूजी नाहीं जाए। नानक सुख अनद पहे प्राप की मानद जाए।

प्रभु के सिमरन दुख जम नसै, प्रभु के सिमरन काल पर हरै, प्रभु के सिमरन दुश्मन टरै। प्रभु सिमरत कज बिघन न लागै, प्रभु के सिमरन अंधिन जागै, प्रभु के सिमरन भौ न व्यापै, प्रभु के सिमरन दुख न संतापै।

प्रभु कै सिमरन उदरे मोचा, प्रभु कै सिमरन तिष्णा बुझै, प्रभु कै सिमरन सब कि सोजै, प्रभु कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिदमाय समाए, प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरै से धनवंते, प्रभु को सिमरै से पतवंते, प्रभु को सिमरै से जन प्रवान, प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरै से बेमोता जे, प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरै से सुखवासी, प्रभु को सिमरै सदा अविनाशी,

सिमरन सहज समानी। प्रभ कै सिमरन ने चलासन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन। प्रभ कै सिमरन अन झुनकार, सुख प्रभ सिमरन कांत ना पार। सिमरै सेजन।

हरि सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन क्यों सगला कारा, सिमरन मैं आप निरंकारा। कर कृपा जिसा बुझाया नानक गुरमुख, हर सिमरन तिन पाया श्लोक।

प्रभु सात अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत ना पहाई मन ओहा नाम तेरा संग सहाई जय मां भयान दूजम दलै ते केवल नाम संग तेरा चलै जय मुश्किल होवै।

सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोड़ी बंदना पर हर का नाम जपत निस्तर है।

अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान जोग अभ्यास करम त्रम क्रिया सगल त्याग बन मदे फ्रिया अनेक प्रकार किए बो जतना पुंदान हूं मैं बो रत्ना शरीर कटाए हूं मैं कर राती वर्तनेम करै बो पाती।

सब रसा सकल समग्री संसाद बसा दीने अस्पाव करने तृष्णा तिसै त्याग वर संरचना ऐसे दोख मुडंद ब्यापे नानक काढ़ लेओ प्रभापे आद अंत जो राखन हा।

अपेक्षा मिथ्या त्रोमो अभिमान मिथ्या पशु प्रकृत गुमान अस्थिर भगत सात की शरण नानक जब जब जीव हर के चरण मिथ्या शरण पर निंदा सुनै मिथ्यास्पद रब को हिरै मिथ्या नेत पेखत प्रत्यय रूपाद मिथ्या रसना।

जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सिक्त रह संसार। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक उन्जन चरण पराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया, आपे माने आपे आप करत निबेरा। किसे दूर जनावत किसे बुझ

अंत अनंतरया समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरि श्लोक काम क्रोध अरलो मोह बिनज्जायमेव नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद।

जे प्रसाद तू प्रकट संसार तिस प्रभ को मूल ना मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड़ तू ताको जाप जे प्रसाद तेरे कारज पूरे तिसै जान मन सदा जूरे जे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता स्यों राच जे प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सुनाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते वे प्रकाश प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए

सुपावे साध संग बस्त गोचर लै साधु कै संग अजर सह सात कै संग बस थान ऊंचै साधु कै संग मैल पहुंचै सात कै संग दृढ़ सप्तरम सात कै संग केवल पाप ब्रह्म सात कै संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान सात कै संग सब कुल उदार है सात संग साजन मीत कुटुंब निस्तार है साधु कै संग सोतन पावे जिस तन ते सबको वरसावे सात संग तरम राय करे सेवा सात कै संग सोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन सात संग अमृत गुण गायन सात कै संग सर्व थान गम नानक सात कै संग सफल जन्म सात कै संग ने कचकाल दर्शन पेट तोत नियाल सात कै संग कलो कथर है सात कै संग नर पर हरै सात कै संगिया हुआ सोयला सात संग बिछर मेला जो इच्छा सोई पल पावे सात कै संग ना बिरथा जावे पार ब्रह्म सात रिद वसै नानक उदरै सात सुन रसै सात कै संग सुनार नाओ सात संग हर के गुण गाओ सात कै संग ना मनते बिसरै सात संग सरपण निस्तरै सात कै संग लगे ब्रह्म मीठा साधु कै संग कट कट डीटा सात संग पै आज्ञाकारी सात संगत पई हमारी सात

की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूझते मूची। साध की शोभा साध बनाई, नानक साध प्रभेद ना पाई। श्लोक मन साचा।

होए अष्टपदि। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्प को शोक, ब्रह्मज्ञानी कह दृश्यमान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, ब्रह्मज्ञानी कह तिरजेक जो बसुदा को खोदय को चंदन।

ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत्र, ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रभाव, ब्रह्मज्ञानी का बर प्रताप, ब्रह्मज्ञानी का दृष बड़ पागी पाई है, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्मज्ञानी को खोजय महेश्वर नानक, ब्रह्मज्ञानी या परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाए, ब्रह्मज्ञानी के सगल मन माए।

और तारै जो अंतर नाम श्रमै पेखै भगवान। निमक निमक ठाकुर नमस्कार। नानक अपरस सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाई रसना परस। मन मै प्रीत निरंजन द्रस। पारत्रिय रूपना पेखै नेत्र। सात की टैल सन संगेत। करण ना सुने काऊ की निंदा। सबते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद बिकिया पर रह। मन की भासना मन ते टरै। इंद्रिय जित पन दोखते रह। नानक कोट मदे को ऐसा परस। वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न। बिसन की माया ते होए पिन। करम करत वह ने क्रम। तिस वैष्णो का निर्मल धर्म। काऊ फल की इच्छा नहीं बाछै। केवल भगत कीर्तन संग्राचै। मन तन अंतर सिमरन गोपाल। सब पर्वत कृपाल। आप दृढ़ अवरै नाम जपावै। नानक वैष्णो परमगत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग। सकल त्याग दुष्ट का संग। मन ते बिनसै सगला। परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म।

नानक ऐसा भगोती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन पर बोधै राम नाम आत्म मैं सोधै राम नाम सारस पीवै। उस पंडित के उपदेश जग जीवै।

पास परेद मुकत पातर कोता रह सर्व रोग काउ खर नाम कल्याण रो मंगल गुण गाम काउ जुगत कित्य ना पाई है तरम नानक तिस मिले जिस लिख्या तुर करम जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आतम राम तिस्नद्री आया दास दसन तन पाए तिन पाया सदा निकट निकट जान सो दास दरगह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परे।

छेद्र लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तह किसै पूक कवन तृप्तावै। करन करावन करने हार, नानक करते का नाहे सुमार। जब अपनी शोभा पन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पहाई।

गतमित कही न जाए, दूसर होय ता सो जी पाए। तिसका किया सब परवान, गुरप्रसाद नानक हो जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए। ओह तनवंत कुलवंत फतवंत, जीवन मुकत जिस हृदय भगवंत। तहन तहन तहन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया।

सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजै, सुन सुन अनद करे प्रभ गाजै। प्रगटे गोपाल महंत कै माथे, नानक उदरे तिनकै साथे। सरन जोग सुन सरनी।